मुंदा संतोख सरम पत झोली ध्यान की करे विभूत थिंथा काल कुवारी काया जुत डंडा प्रतीत आई पंथी सगल जमाती मन जीते जगजीत आदेश से आदेश आद अनिल अनाद अनाहत।

चर्य स्थूला सपर कृपा दृष्ट कर फूला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक की पीर पछाने कट कट के पट पट की जाने जाबुद करख करा करतारा प्रजा धरत।

0: away on his birthday, Ashok Kumar, fondly called Dada Muni, reportedly never celebrated his birthday again. ये कहते हैं अशोक के बारे में. खैर, बहुत अच्छे यासर, बड़ी अच्छी चीज़ें आपने आज चूज़ की हैं टुडे इन हिस्ट्री. चंद्रिका वासंत गोसाई के बाद आती हैं मंजुला विश्वकर्मा.
1: सबको नमस्कार परवीन जी. अंत का भी अंत होता है, सब कुछ कहाँ अनंत होता है. पतझड़ भी एक घटना है, 12 महीने कहाँ बसंत होता है. बसंत मतलब स्प्रिंग सीजन. 12 महीने कहाँ बसंत होता है. जीवन में आए कष्टों से घबराएं नहीं, समय आने पर उनका भी अंत होता है. शुभ प्रभात.
0: क्या ब्यूटीफुल है कि अंत का भी अंत होता है. इसको समय मैं रिपीट करती हूँ, जिन्होंने नहीं सुना वो कान खोल लें और फिर से सुने, जिन्होंने सुना है देखें. व्हाट अ ब्यूटीफुल कहावत है ये.
1: सबको नमस्कार परवीन जी. अंत का भी अंत होता है, सब कुछ कहाँ अनंत होता है. पतझड़ भी एक घटना है, 12 महीने कहाँ बसंत होता है. बसंत मतलब स्प्रिंग सीजन. 12 महीने कहाँ बसंत होता है. जीवन में आए कष्टों से घबराएं नहीं, समय आने पर उनका भी अंत होता है. शुभ प्रभात.
0: कष्टों का भी अंत होता है, 12 महीने बसंत कहाँ होती है. क्या कमाल है मंजुला विश्वकर्मा. समझना, बर्थडे किसकी है. आप सुनते हैं हमेशा हमारे तलत के फैन यूसुफ भट्ट, उनके पोते यूसुफ भट्ट और शनाज भट्ट के पोते हैं मोहम्मद भट्ट, इनकी सालगिरह आज है. धूमधाम से मनाई जा रही, पूरे खानदान वाले दुआएं भेज रहे हैं मोहम्मद भट्ट को, दिली दुआएं. उम्र दराज खुदा अता करे बच्चे को. 15 साल के हो गए हैं और सुन रहे हैं अपनी ग्रीटिंग, सुन रहे हैं. मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे टू यू. समय वालदैन के लिए भी दुआ है कि अपने बेटे की खुशियां देखें, पोते की, या बेटे की और फिर पोते की, शनाज और यूसुफ. बट कहा है कि सिर्फ एक ही है आपसे रिक्वेस्ट, ये सुना दें.

और लंदन से आया है मैसेज कि व्हेन यू राइज इन लाइफ योर फ्रेंड्स नो हु यू आर, व्हेन यू फॉल डाउन यू नो हु योर फ्रेंड्स आर. बहुत अच्छे सलीदार. और इनके बाद रसीला ने कहा है, कहती हैं कि यू सी दिस ईयर वी लॉस्ट सो मैनी पीपल, वी लॉस्ट सम वॉइसेस. आशा भोसले, शी डाइड इन अप्रैल. बिल्कुल, कहते बहुत हार्ट ब्रेकिंग लॉसेस फॉर लवर्स ऑफ इंडियन सिनेमा. आशा भोसले चली गई. फिर कहते हैं कि सुमन कल्याणपुर ऑल्सो वेंट. अनफॉरगेटेबल मेलोडीज देकर दोनों सिंगर्स चले गई. वाकई रसीला, थैंक यू. खत्री मोहम्मद, बहुत शुक्रिया. धीरू भाई लिखानी, बहुत शुक्रिया. और हैप्पी बर्थडे टू मोहम्मद बट सना, बहुत शुक्रिया. और इटली से गुड मॉर्निंग का मैसेज आ गया है. और समय वो जो मैंने कहना था ना, बताना था आपको कि ह्यूमन राइट्स कमीशन के सामने कौन सा मुद्दा पेश किया गया है और उन्होंने जवाब क्या दिया है.

0: सिर्फ एक दिन के लिए इसका ख्याल रख लो, जिंदगी रही तो अकेले जाऊंगा।
1: कौन इस भिखारन के साथ क्यों बात कर रहा है? अरे लगता है ये तो रामकली भेस बदल के गा रही है।

0: मैं बहुत चाहती थी कि कोई हमें बताए दुर्योधन और रावण का जो किस्सा है, किसके गुनाह ज्यादा गंभीर हैं।
1: परवीन जी नमस्कार, आप अच्छा टॉपिक लेके आए हो। परवीन जी, दुर्योधन को क्यों नहीं जलाया जाता? दुर्योधन अज्ञानी था, रावण बहुत ज्ञानी था, उसको चारों वेदों का ज्ञान था। आपको भी पता है, एक इंसान बुद्धिमान, पढ़ा लिखा, यानी कि पढ़ा लिखा मीन चारों वेदों का जिसको ज्ञान था, वो ऐसी गलती करे अपनी बहन के, यानी कि बहन ने इंस्टिगेट किया तो उसके उकसाने पर उसने सीता का हरण किया। लेकिन उसको पता था कि मैं राम, भगवान राम जी से हारने वाला हूँ, क्योंकि वो चाहता था कि मेरी लॉर्ड रामा के हाथ मुक्ति हो। मैं शॉर्टकट में बता रही हूँ, तो इसलिए लोगों को दिखाने के लिए, देखो उसको अहंकार बहुत था। लोगों को ये बताया गया है, इंसान जो अहंकारी भी होता है ना, उसका भी एंड ऐसा ही होता है। और दुर्योधन को जलाना, अज्ञानी मानव को क्यों जलाना है? देखो मैं आपकी एग्जांपल देती हूँ, ये मत सोचना आप देखो कितने मतलब इंटेलिजेंट हो। आप छोटे से भी गलती करोगे ना, तो हम लिसनर आपकी गलती पकड़ लेंगे। तो कारण यही है। और द्रौपदी, दुर्योधन का तो आपको पता है कि उसने द्रौपदी का क्या हाल किया था। ऐसे किसी औरत का निरादर करना हमारे शास्त्रों में या वैसे भी बहुत बहुत निंदनीय है। आपको तो पता ही होगा, मैंने बोला तो ये आपने पहले भी ये टॉपिक डिस्कस किया हुआ है, लेकिन मैं शॉर्टकट में बता रही हूँ कि ज्ञानी मानव अगर गलती करे तो उसको हो सजा देनी पड़ती है, और लोगों को दिखाने के लिए। ऋतु गुप्ता
0: जी, जी रावण की बात की है, लेकिन ये पहली बार किसी ने शिकायत की है, कि पहली बार कहा है इसको जोड़ा है ह्यूमन राइट्स से। मैं इसलिए हम वापस आए हैं, लेकिन तब भी हमने दुर्योधन का कंपैरिजन नहीं किया था, सिर्फ रावण की बात की थी। अच्छा रितु गुप्ता, बहुत अच्छे, 11 बज गए हैं, पहले खबरें सुनते फिर आप बताइएगा क्या होना चाहिए।
2: This is East FM, Kenya's premier Asian mix.
3: Every brand has a story, the big idea, the exciting new product, the offer your customers will love, the service you've worked hard to build. And when you've got something this good, why not give it a bigger stage? Give your brand the kind of exposure that gets remembered with East FM. Whether you're launching, promoting, growing, or celebrating a new milestone, we'll help you turn your message into something people remember. Advertise with Radio Africa Group. Whether you'd like to advertise on the Star, our digital platforms including Mpasho, and even on air with East FM, call us on 0711-046-200 or email sales@radioafricagroup.co.ke. Your brand has a story. Let's give it the audience it deserves on East FM.
4: Why is the Star Kenya's biggest newspaper? Because the Star circulates 100,000 copies. And why is the Star Kenya's boldest newspaper? Because the Star brings you stories no one dare touch. That is, 100,000 copies of Kenya's biggest and boldest newspaper. 100,000 copies in circulation. 100,000 copies of the Star right there where you are. 100,000 copies of the Star, right there where you are. Grab a copy of the new, boldly reimagined and revamped Star newspaper, because smart people read the Star.
5: With news from Kenya, Asia, and around the world, this is East FM News.
6: Jubilee Party presidential flag bearer Fred Matiang'i has urged President William Ruto to exercise restraint in his public remarks, saying his statements should reflect the dignity of his office. Speaking during a media interview, Matiang'i, who called the president to order, further warned that the president's continued verbal outbursts could be politically damaging. He also dismissed claims that he and former President Uhuru Kenyatta are political frauds.
7: The president is on a self-destruction mission. Anajaribu yeye mwenyewe. Sasa wewe kama mwananchi ukiona rais wako akiongea vile mheshimiwa rais anaongea hivi, I mean you don't get worried. In fact me I get more worried than annoyed about what the president says, because there are some things that are not supposed to come out of the president's mouth.
6: Security expert George Musa Mali has raised concerns over the safety of university and college students living outside campuses, citing an uncontrolled movement and inadequate security in rented houses. Musa Mali says many students live in environments where their movements and whereabouts are difficult to monitor, exposing them to potential danger. His remarks follow the death of 22-year-old Ivy Anyango, whose body was found in a septic tank after she went missing in June.
8: As much as we are saying universities should have policies, inakuwa ni vigumu sana, principal, kama Kabete National Polytechnic to manage 15,000 students to ambao siku hiyo wako college. Na hiyo zamani kulikuwa kuna mnakuja wengine wanaenda break, nyinyi mnaingia.
6: And police have arrested a 27-year-old man in Free Area, Nakuru County, and recovered suspected stolen goods linked to a series of house breaks in Tabuga and its environs. Officers from Githioro Police Station recovered 2 43-inch televisions, 3 subwoofers, clothing, bedding, footwear, and ammunition, including 1 live round, a pair of KDF jungle trousers, and a homemade toy gun were also seized. Some of the recovered items have been identified by their owners as the suspect remains in custody as investigations continue ahead of his arraignment. Moving on, three people.

0: રામાયણ બીજી વસ્તુ છે અને મહાભારત ગીતા ઉપર છે, ડિફરન્ટ વસ્તુ છે. એટલે તમે બેનો કમ્પેર કરી જુઓ તો બહુ ડિફરન્સ છે. રાવણ સીતાને લઈ ગયો હતો, મીન્સ કિડનેપર સ્ટોરી છે, અને મહાભારત ફેમિલી સ્ટોરી છે. એટલે એ બેમાં ડિફરન્સ તો છે જ. આનાથી ને વધારે જો જે જાણકાર હોય એ એનો જવાબ આપી શકે. આ મારા પ્રમાણે મેં એને તમને જવાબ આપ્યો છે. થેન્ક યુ. મનોહર પટેલ, કિસુમુ.
1: અચ્છા, રામાયણ ઓર મહાભારત મેં આપને ફર્ક પર આજ મેરે ખ્યાલ હે મહાભારત કી બાત હો રહી હે.
2: જલાના જી ઉસને ભી બહોત અત્યાચાર કિયા, તો જો જલ રહા હે ઉસે જલાને દીજીએ, જો ચૂપ હે ઉસે રહેને દીજીએ. બહોત ગહેરાઈ પે જાના હમ મેં નહીં સમજતા હું, ઠીક હે, એસે તો ફિર બહોત નંબર લગ જાયેંગે. શુક્રિયા.
1: નહીં નહીં, સોચના ચાહીએ, અપને દિમાગ પે જોર દેના ચાહીએ ઓર સોચના ચાહીએ. ખુદા ને દિમાગ દિયા હે સોચને કે લિયે, જો યે હુઆ હૈ કિસ તરહ હુઆ, આપ ભી સોચ કર એક મોકફ ઇખ્તિયાર કર સકતે હૈ. રાવણ શુડ બી બુક્ડ અંડર સેક્શન 3593. દુર્યોધન શુડ બી બુક્ડ અંડર અ ડિફરન્ટ સેક્શન. ઇન્ડિયન પીનલ કોડ કે તહેત ઉન્હોને જોક કિયા. કલ્પના, નીતા મોદી, નીતા મોદી કા ભી કુછ હોના ચાહીએ, બીકોઝ આઈ નો ઉન્હોને પઢા હુઆ યે સબ. और मेरे ख्याल से ये मैसेज है.
3: सलाम वालेकुम परवीन जी, गुड मॉर्निंग. बहुत ही कह सकते कि करंट टॉपिक है ये. दशहरा आ रहा है और आपने ये आप ये टॉपिक लाए हो. आज पहली बार नहीं हुआ है कि ह्यूमन राइट्स के लिए रावण को जलाने के लिए ना बोल रहे हैं, पर बहुत लोग बोल रहे हैं कि बार बार रावण को जलाने की क्या जरूरत है, एक बार जला दिया था. पर कहीं संत कहीं महात्मा बोलते हैं कि रावण को जलाने की जरूरत नहीं है, उनके अंदर जो बुरे तत्व है थे वो जलाने की जरूरत है, और हम में भी हम लोगों में भी उनके कहीं बुरे तत्व है, जैसे बेईमानी करनी, जेलस करनी, अभिमान करना, बहुत सारी चीजें. पर मैसेज लंबा हो जाएगा, तो वो उन चीजों को जलाने की जरूरत है. किसी पुतले को रावण के रूप में जलाने की कोई जरूरत नहीं है. और दोनों के एरा अलग थे. दुर्योधन ने जो किया था वो चीज अलग थी, रावण ने जो किया था वो चीज बिल्कुल अलग थी. दोनों के काल अलग अलग थे, दोनों के समय अलग अलग थे. वो हुआ था, वो आज तक का सबसे बड़ा युद्ध था महाभारत का, और दुर्योधन ने जो किया था वो अलग तरीके का था. पर एक अरसा हो गया, बहुत लोग बोलते हैं कि अब वो थोड़ा बदलने की जरूरत है. रावण को ना जलाए, रावण के जो कौन कौन सी ऐसी चीज थी कि जिसकी वजह से इतना शक्तिशाली, इतना बड़ा पंडित, इतना बड़ा शिव का भक्त, सब कुछ होने के बाद भी उसको हारना पड़ा. और उस वक्त भी रावण को जलाया नहीं था, रावण की नाभि में तीर मारे थे राम ने, और वैसे उसकी डेथ हुई थी. तो ये पता नहीं किसने शुरू किया है, पर ये गलत चीज है रावण को जलाने की. और अब तो हजारों साल बीत गए है. तो हम लोगों गुजराती में कहावत है कि सांप चला गया, सांप कहीं से पास होकर चला गया और उसके मार्क छोड़ गया. तो मतलब सांप को मारने की जरूरत होती है ना, उनके वो जो दाग छोड़ जाते हैं सांप, उसको मारने की जरूरत नहीं होती है, उसको तो क्लीन करने होते हैं. तो रावण चला गया और जो दाग जो धब्बे वो छोड़ गया है, अभिमान का, वायोलेंस का, उसको क्लीन करने की जरूरत है.

अच्छा, बहुत अच्छा मौकफ है आपका। नीता मोदी ने कहा है कि अक्सर लोग ये सवाल उठाते हैं, लेकिन मुझे नहीं पता था कि दुर्योधन और रावण अलग अलग औकात में थे, दौर में थे। जैसे कि मनहर भी कह के गए हैं कि इनका अलग दौर था, उनका अलग दौर था। ओके, तो समझ, कोई चीज़ें, कोई रिवायतें सदियों चलती आती हैं, उनकी ज़रूरत भी होती है। जैसे कि हर साल याद करना कि हम में क्रोध भी है, हम जेलस भी हो सकते हैं, नफरत भी कर सकते हैं, हम इखलाक से गिर भी सकते हैं, तो अपने आप को याद दिलाने की एक बात है। सो इसमें मुझे कोई हर्ज भी नहीं दिखता।

0: Han ni säkert en målgård.
1: Pravin ji, kisi ne apna bana ke mujhko. Ye gana film Patita ka hai, 1953 ki movie hai, jisko Lata Mangeshkar ne gaya hai, Shailendra ne likha hai, aur jiski dhun Shankar Kishan ne banayi hai. Ye purana beautiful gana sunane ke liye aapka shukriya.
0: Aur ab dekhte hain Dinesh kya kehna chahte hain.
2: Pravin ji, अभी मनोहर भाई ने कहा दुर्योधन के जो महाभारत और रामायण का इरा अलग था, बहुत डिफरेंस था, सही बात है. लेकिन अपना जैनिज्म में माने तो रामायण दैट वाज समथिंग लाइक 300,000 ईयर्स एगो ने महाभारत है अभी 80,000 ईयर्स एगो जैनिज्म से हिसाब से होता है. जो अपना मुनीश्वर स्वामी दादा है उस टाइम का ये रामायण था और नेमिनाथ भगवान है उस टाइम का अपना ये महाभारत है. नेमिनाथ भगवान और ये कृष्ण भगवान देवर कजिन्स, तो वो इरा बहुत डिफरेंस है. वो 3 लाख पहले का वर्ष है रामायण का और 80,000 ईयर्स है वो ये महाभारत है. और अभी जलाने की बात होती है तो जलाने ठीक है, लेकिन अभी ये जलाने की बात नहीं है. अभी जो मन में तुम्हारा अभिमान है, घमंड है, ये सब जलाओ. तुम्हारे दिल में जो है, रावण को जलाने की जरूरत नहीं है. दिनेश शाह
0: बिल्कुल. और दिनेश मैं आपको कहानी बताती हूँ. हमारे भी मजहब में शैतान था तो उसको बनाया था खुदा ने, और फिर जैसे आप कहें कि स्वर्ग में रखा, और फिर उन्होंने खुदा ने इंसान को बनाया, आदम पहला इंसान. तो फिर खुदा ने इसको कहा, जैसे आपका रावण है हमारा शैतान है इब्लीस, तो उसे कहा कि इस आदमी मैंने बनाया है इसको सिजदा कर, मतलब कि बाउ डाउन टू हिम. अब ये भी जैसे आपका रावण बड़ा ज्ञानी था, ये भी बड़ा इल्म था इसका, शैतान का इब्लीस का बहुत इल्म था, आलिम था. कहने लगा आई विल नॉट. खुदा ने कहा तू मेरे हुक्म को नहीं. कहने लगा तूने मुझे आग से बनाया है, मैं इनसे ज्यादा, मैं सुपीरियर हूं, तूने इसको मट्टी से बनाया है, मैं इसके आगे नहीं झुकूंगा. तो फिर खुदा ने क्या करा किया, उन्होंने कहा निकल जाओ यहां से, उतरो, और उसको धरती पर फेंक दिया जन्नत से. उसने कहा तू मुझे फेंक रहा है पर तू देख मैं कैसे तेरे इंसानों को गलत रास्ते पे ले जाऊंगा, आगे से पीछे से उन पर वार करूंगा, उनको तेरी इबादत नहीं करने दूंगा. तो समझने, ऐसे हम मानते हैं कि शैतान हमारे साथ साथ चलता है. खुदा ने कहा जा, खुदा ने दे दी वो इजाजत उसको, क्योंकि खुदा के लिए तो ये अच्छी चीज है, वो देखता है कि कौन मेरा है और कौन शैतान के रास्ते पे चल दिया है.

0: Nita Modi, get your what a song. To be honest, Parvinji, listening to this show purely because of you, nothing else. Look, kya khush kar diya Nita Modi. But yes, each and every day your selection of evergreen songs and the cream on the cake to you. Kya baat, bahut acche Nita Modi. Actually, aapka taste itna acha hai na, isliye to phir ye sab mumkin hota hai.
1: मैं अशोक किक्की से बोल रहा हूँ. वो बहन जी जो एक्सप्लेन किया बहुत अच्छा किया. रावण बहुत अच्छा आदमी था, उसमें कुछ बुराई था. वो अगर उसका बहन को नहीं सुनता तो आज झगड़ा नहीं होता, रावण अमर रहता. रावण शनि देव भगवान को बांध दिया था, उसका ये बुरा काम किया था. क्योंकि जब उसका बेटा जन्म लिया, जन्म लेने से पहले जितनी शनिदेव और 12 जो घर होते हैं सभी को पकड़ के एक घर में डाल दिया था. क्योंकि उसका बेटा जब जन्म लेगा तो अमर रहेगा, तो ये पता चल गया था शनि को, शनि भगवान को. तो जन्म लेने से पहले वो निकल के दूसरे घर में चला गया, इसीलिए रावण ने उसको बांध दिया था श्रीलंका में. तो ऐसे छोटे छोटे कहानी बहुत है. और रावण जो शास्त्री को क्या बोलते हैं, जो हॉलीडे बनाते हैं, वो तो बहुत पहले से आ रहा है और चाहता ही रहेगा, हम उसे रोक नहीं सकेंगे
0: जी. और ये रस्म को रोके क्यों? क्योंकि आप एक शख्स हैं जो भारत में गए हैं ह्यूमन राइट्स कमीशन के सामने. जो नहीं चाहते वो ना आए, पर जो मानते हैं वो तो जलाएं, इकट्ठे हों, सोचें और बात करें, कम्युनिकेट करें एक दूसरे के साथ. एक त्यौहार है. और शब्बीर अहमद, लता जी का गाना, उफ क्या ब्यूटीफुल था. सलीम मेहर फ्रॉम लंदन.
2: अस्सलाम वालेकुम प्रवीण जी, सलीम मेहर फ्रॉम लंदन. समवन रिमेंबर्स, Someone cares. Your name is whispered in someone's prayers. Keep this beautiful feeling in view. Someone is always wishing good for you. Take care. Pranji, good morning to you and all your lovely Bay Missiles listeners. Have a lovely day.
0: क्या बात की है आपने? कहते हैं कि आपका नाम कहीं ना कहीं किसी की दुआओं में आता है. क्या बात है? या कोई ना कोई तो दुआ करता ही होगा ना. अब यहाँ पर कौन है?
3: परिन जी, आप ठीक हो? परिन जी, आपने बिल्कुल सच कहा. परिन जी, अल्लाह के आगे वो इबलीस नहीं जीत सकता. और ये इबलीस ने ही हम सबको गुमराह करने की कोशिश की है और अभी करता ही है, लेकिन अल्लाह से नहीं जीतेगा ये इंशाल्लाह. हम मुसलमान ईमान वाले हैं और हमेशा हमारा ईमान कायम रहेगा. अपना ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज.
0: समझिए, वो बात करनी है जो अभी मैं कहकर गई कि शैतान हमको भटकाएगा पूरी जिंदगी, लेकिन वो कहते हैं कि हम शैतान के कहे में नहीं आने वाले. बहुत अच्छे हुस्ना मोहम्मद.
4: प्रवीण जी, आपने अभी जो शैतान की बात की, ऐसे लगता है ऐसे अभी दुनिया में ये टाइम का अनुभव करेगा तो शैतान बहुत हो गया है. आदमी को गलत रास्ते से भेजते हैं, सब ऐसे ही हो गया है. सब दया का भाव नहीं है, कुछ है नहीं है. टेररिस्ट होता है वो सही बात है, लेकिन ये रावण का है. रावण अभी हमारे हिसाब से नेक्स्ट जो इरा होएगा उसमें तीर्थंकर बनने वाला है. तो इसलिए हम रावण को जलाते नहीं लेकिन पूछते हैं. दिनेश शाह.
0: अच्छा, आप पूछते हैं रावण को? ओके, ठीक है दिनेश, बहुत अच्छा कहा जो आपने कहा है. और गुड मॉर्निंग उमर ने कहा, गॉड ब्लेस यू, यू पुट इट सो नाइसली, यू एक्सप्लेन्ड शैतान. समझ, ये उमर, बात ये है कि बचपन से ये स्टोरी मुझे बहुत इंट्रीग करती है, शैतान की और खुदा की, इसलिए मैंने सोचा लिसनर्स के साथ बांटती हूँ. दर्शन सिंह लोटे इन ऑस्ट्रेलिया, आप भी सुन रहे हैं और दुनिया में ऐसा कहाँ सब का नसीब है. बहुत अच्छा लगा आपको गाना. ठीक है, अब चलते हैं मिसेस धंजल.
5: हेलो प्रवीण जी, गुड मॉर्निंग मिसेज धंजलियन, प्रवीण जी दशहरा नजदीक आ रहा है और हम आज रामायण और महाभारत की बात कर रहे हैं। प्रवीण जी, दुर्योधन ने जो कुकर्म पांडवों के साथ किए थे वो तो अगणित है, लेकिन समय समय की बात है दुर्योधन बच गया। और रही रावण की बात, जब बुद्धि भ्रष्ट होती है तो पता नहीं चलता इंसान क्या कर रहा है, गलत या ठीक। अदरवाइज रावण तो बहुत बुद्धिमान था। दूसरा, हिस्ट्री बताती है कि रावण ने ये क्यों किया। रावण राम जी के हाथों मरना चाहता था, इसलिए उन्होंने सीता जी को चुराया, लेकिन बाइज्जत सीता जी को अशोक वाटिका में रखा था। अभी हर साल रावण जी का पुतला जलाया जाता है, ये भी एक वे है रावण को याद करने का। प्रवीण जी, हम दुर्योधन की बात कर रहे हैं, उसको क्यों नहीं ऐसे सजा दी गई, रावण की तरह सजा क्यों नहीं दी गई। प्रवीण जी, पहले की बात छोड़ो, आजकल तो कई रावण और दुर्योधन से बदतर इंसान हैं जो आए दिन औरतों की लड़कियों की इज्जत लूट रहे हैं, फिर भी बच जाते हैं, उनको क्यों रावण की तरह नहीं जलाया जाता। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, गुड डे।
0: मिसेस धंजल, ठीक, वो तो एक महिला को अगर उठा भी लिया, यहाँ तो पूरे देश को आग लगा देते हैं, स्वयं पूरे देश को फना कर देते हैं और कुछ भी नहीं होता, उनके साथ कब होगा, हो नहीं रहा। खैर, हम आगे बढ़ते हैं तलत महमूद की आवाज़।

0: यादगार दो गाना लता तलत का। अब देखते हैं किसी ने हमें कोई जानकारी देनी है गीतों की।
1: प्रवीण जी, प्यास कुछ और भड़काती, ये गाना फिल्म लाला रुख का है, 1958 की मूवी है, जिसको तलत महमूद और आशा भोसले ने गाया है, और जिसको कैफी आजमी ने लिखा है, और जिसकी धुन खयाम ने बनाई है। ये ब्यूटीफुल पुराना गाना।
0: और समय आगे हैं
1: प्रवीण जी, ओ दिलदार, ये गाना फिल्म स्कूल मास्टर का है, 1959 की मूवी है, और जिसको तलत महमूद और लता मंगेशकर ने गाया है, और जिसको कवि प्रदीप ने लिखा है, और जिसकी धुन वसंत देसाई ने बनाई है। ये
0: बहुत खूब वसंत देसाई भी माया नाज मौसिकार। अब देखते हैं भरत गंगाराम ने कितनी मिठाइयाँ बनाई हैं। तो बार नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं, और बीच में इतना ब्यूटीफुल दिया रखा, रंग रंग ग्रीन रंग की मिठाई है, सफ़ेद की है, ऑरेंज पीले सब सभी रंग हैं, इतना बड़ा थाल है, कमाल कर दिया है। भरत गंगाराम कहते हैं कि मेरे कारोबार में बड़ी बरकत है। और यहाँ पर हैं शैलेश और शीला।
2: जोसदेव की गाना आपने बहुत अच्छे अच्छे गाने से शुरुआत की, हमको बहुत मजा आ रही है।
0: बहुत खूब। अब लेते हैं ब्रेक, और ब्रेक के बाद समिन आपको मैं बताती हूँ कि आज का दिन ट्यूसडे है। ब्रेक से पहले ही बता दूं, आपको पता है अब तक कि कौन से लोग द स्टार पढ़ते हैं, खास तौर पे द ट्यूसडे स्टार, स्मार्ट पीपल। अगर आपने स्मार्ट होना है तो आप जाके उठा लें, आज मुफ्त है द ट्यूसडे स्टार, बिल्कुल मुफ्त, आपकी जानकारी के लिए, आपकी सहूलत के लिए, बचत के लिए, 60 शिलिंग की आपने बचत करनी है, ट्यूसडे स्टार मुफ्त ले जाएं। कहाँ कहाँ क्विक मार्ट हैं, हुडुमा सेंटर्स भी आप जा सकते हैं, किसी पोस्ट ऑफिस चले जाएं, और सड़क पे जो बेचते हैं वो अखबार फरोश, उनको चंदाराना पिज़्ज़ा इन, क्रीमी इन, टोटाल ओला पेट्रोल स्टेशन पर भी जाके आप कहें कि आज की ट्यूसडे स्टार मुझे दे दें, आज मुफ्त है, वो हंस कर आपको देंगे। और हम ब्रेक लेंगे।
3: दिस इज ईस्ट एफएम, केन्या'स प्रीमियर एशियन मिक्स।
4: रोज साडे नाल जुड़ो गुरबानी प्रोग्राम अते गुरमुख विचारां वास्ते सवेरे 6 बजे तो लेके 7 बजे तक। स्टार्ट योर डे विद पीस एंड डिवोशन। द ईस्ट अफ्रीकन रामगढ़िया बोर्ड ब्रिंग्स टू यू रिलीजियस प्रेयर्स। ट्यून इन एंड बी अ पार्ट ऑफ दिस डिवाइन जर्नी एवरी मॉर्निंग फ्रॉम 6 AM टू 7 AM ऑन ईस्ट एफएम, ब्रॉट टू यू बाय द ईस्ट अफ्रीकन।

0: कहानी निधि दत्ता की जुबानी खोल रहा है फिर से कहानियों का पिटारा। कहानी कभी किसी मशहूर लेखक की, कभी किसी अनजानी सी दुनिया से निकली हुई, कभी दिल को छू लेने वाली और कभी सोचने पर मजबूर कर देने वाली, कभी हल्की फुल्की और कभी गहरी, मगर हर बार एक नई कहानी, एक नया किरदार और इंसान को देखने का एक नया नजरिया। तो सुनने के लिए ट्यून इन कीजिए हर सैटरडे शाम को 4 बजे। कहानियों की बस्ती फिर से बसने जा रही है, तो आइएगा जरूर।
1: ईस्ट FM, Kenya's premier Asian mix.
2: Spice with the perfect blend of your favorite music. ईस्ट FM, Kenya's premier Asian mix.

और नीता मोती कहती हैं परवीन जी को हम कभी नहीं भूल सकते भास्कर पटेल फ्रॉम मैनचेस्टर आपकी ग्रीटिंग्स तमाम लिसनर्स को दोस्तों को आप हैं मैनचेस्टर में पर यहाँ पर इनका घर है और अब देखते हैं कि आपको जी रेखा वालिया ने क्या कहा था कि मेरा लफ्ज़ है कुआं समिन वेल मैं श्योर नहीं हूँ कि पहले वेल कर लिया है हमने मुहावरे में कि नहीं पर आज फिर से करते हैं क्योंकि रेखा ने कहा है वेल कुआं तो कुएं पर आपने हिंदी में मुहावरे देने हैं

समिन वो नेकी कर कुएं में डाल वो छोड़ दें, वो नहीं मुझे चाहिए। दरिया में फेंक, नेकी कर पानी में वगैरह वगैरह, वो नहीं। और कोई आपके पास है कुएं वाला तो फिर ठीक है, जैसे कि सना काना आई है, आगे कुआं पीछे खाई। ओके, और कुआं खोदना, बहुत अच्छे सना, ये भी समझा दें कि कुआं खोदने का मतलब क्या है, ये बात ठीक है। और सलमा आप बदलें अपना। भरत गंगाराम, आपने कहा है प्यास लगने पर कुआं खोदना और आग लगे नहीं और आगे कुआं पीछे खाई, बहुत अच्छे। प्यास लगने पर कुआं खोदना मतलब बर वक्त काम ना करना, बहुत अच्छे भरत गंगाराम लंदन। और बिंदु, बिंदु ने नमस्कार सभी को कहा है, आग लगने पर कुआं खोदना, वेरी गुड वन। और कोई है तो दे दें, वरना ये मुझे लगता है कि इतने ज़्यादा कुएं पर नहीं होंगे।

0: FM, Kenya's premier Asian mix.
1: और आप देखते हैं कुछ पंजाबी के जरूर आए होंगे मुहावरे
2: मुहावरे हैं कुएं में गिरना कि अपने आप को मुसीबत में डालना, नंबर दो कुएं का मेंढक, नंबर तीन है कुआं खोदना, नेक्स्ट है प्यासा कुएं के पास जाता है कुआं कभी नहीं आता, नेक्स्ट पिवन जी पूरे कुएं में बांग पड़ना, मतलब के बुद्धि मारी जानी।